0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: जी सामीन नाजरीन, आपको अपने प्रोग्राम में हम दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सेगमेंट का दूसरा हिस्सा बाबा जी की याद में जो है वो हम शुरू करेंगे और चलते हैं स्टूडियो में, जहां पे जनाब बाशी कुरैशी साहब और शौकत भाई तशरीफ रखते हैं। जी तो आइए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो में।
2: सामिन और नाजरीन, जैसे अभी आज हमने प्रोग्राम शुरू किया था बाबा जी की याद में, और उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है शौकत भाई अभी आ गए हैं स्टूडियो में, उसके साथ हमारे साथ टेलीफोन पे नसर मलिक भी मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमसे कहा कि वो टेलीफोन पे भी बात करना चाहते हैं, वो भी टेलीफोन कॉल भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शौकत भाई जो उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने जब रेडियो प्रोग्राम शुरू किया और हाजी साहब से बात की, तो ये प्रोग्राम जो रेडियो हमवतन पे शुरू किया, इसकी वजूहात बताएं थोड़ा सा।
3: जी सबसे पहले तो तमाम सुनने वाले सामने